सिक्स सुनी रही हो तो कि मैं अपने शो अठ बजे जी तुसा मेरा मोहम्मद कमरा चौधरी मुगल इन्होंने नाम सुन सुन

जी नेक्स्ट और स्पेशल जनाब तीर पख औरंगजेब जितने सोने ग्रुप ने संगी दोस्त

0: name is Shereen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Simon Bashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
8: And the winner is
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Sheffield's very own community radio station.
12: Link FM.
0: My name is Shereen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Simon Bashir.
3: This is Rahul.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri peri chicken burger.
2: Days a week, our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab hai beta. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है ते द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
9: 07939-849-339. तू सब का है खुदा तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
10: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
11: My name is Shireen
12: My name is Abdul Rahman
13: My name is Shai Mudashir
14: This is Rahul
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Bashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
8: And the winner is...
9: And the winner is...
10: And the winner is...
8: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
12: Sheffield's very own community radio station.
13: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Bashir.
3: This is Rahul.
12: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
13: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Bashir.
3: This is Rahul.
0: My name

प्रोग्राम में ब्रेक थी और ब्रेक बड़ी जरूरी है क्योंकि रेडियो स्टेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक को प्ले करना। कमर्शियल ब्रेक होती हैं जो रेडियो की किस्म की जान है क्योंकि रेडियो चलता है उनके जरिए है। तो अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ। ये कलाम जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा तो इंशाल्लाह इस कलाम के बाद आपसे मुलाकात होगी और कोशिश करूंगा कि इसके बाद एक और कलाम आपको साथ ही सुनाया जाए।

को खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर। प्रोग्राम है कवाली शो और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी, और खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कलाम आप सुन रहे हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: I'm Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Shaim Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
8: And the winner is
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
11: Sheffield's very own community radio station.
12: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Shaim Mudashir.
3: This is Rahul.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.
0: Linking community. This is Link FM.

0: will I do? Just hanging on this tree. I sigh, a lemon sigh, just wondering why nobody is picking me. Now I may be a warm lemon tea, maybe marmalade jam. Such a wonderful treat, this person so sweet loves me just for what I am.
1: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ साथ करता रहूंगा।

0: आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर, मिया आशिक को देखते हैं दुपट्टे को तान कर देते हैं।
1: You are listening to Link FM.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: अस्सलाम वालेकुम, मैं नईम अज़हरवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।
4: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, mazeersolicitors.co.uk. Mazeer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें।
6: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: This is Link FM.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद.
2: मैं औरंगजेब चौधरी.
3: मैं असलम भुट्टा.
4: मैं जी हुसैन कपूर शफील से.
5: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है.
6: मेरा नाम अहमद अख्तर है.
7: मैं अरशद खान शफील से हूं.
8: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है.
9: मेरा नाम इमरानी है. कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7.

0: I'm Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
8: And the winner is
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Sheffield's very own community radio station,
12: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shai Mudashir.
3: This is Rahul.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं, निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri peri chicken burger.
2: Days a week, our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab hai beta. Or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्लाइंट की गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
9: 07939-849-339. तू सबका है खुदा तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
10: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
11: My name is Shireen
12: My name is Abdul Rahman
13: My name is Shai Mudashir
14: This is Rahul
1: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.
1: Your number one for news in Sheffield, Link FM.

अर्कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
2: दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।
4: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
5: Link FM.

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Sheffield's very own community radio station.
8: Link FM.
9: My name's Shireen.
10: My name is Abed Rahman.
11: My name is Sai Mudashia.
12: This is Rahul.
7: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
8: Link FM.
13: This is Link FM.
0: You are listening to Link FM 96.7.

0: अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा इफ्तखार ठाकुर पे बोलना ते तुसी सुनने हो पे लिंक एफएम 96.7 बहुत मजा है सीने।
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: شكرا لك دكتور حسن سلهاب، بارك الله فيك. وأيضا أشكر الدكتورة الأستاذة نسيمة محمد، بارك الله فيها على المعلومات القيمة للإجازة الصيفية للأمهات والآباء، نصائح مهمة جدا. أتمنى أن الكل استفاد من هذه الحلقة، بارك الله فيكم.
1: شكرا لك، الله يحفظك،
0: في ميزان حسناتكم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب، آمين يا رب، جزاك الله خير.
0: مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وإن شاء الله ألقاكم في حلقة جديدة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا. To help you get back on the road. Terms and conditions apply. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज, फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है, तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है। iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
2: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
3: And the winner is your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
5: Sheffield's very own community radio station.
6: Link FM.
7: My name is Shireen.
8: My name is Abdul Rahman.
9: My name is Sai Mudassir.
10: This is Rahul.
11: My name is Rizwan Ishraq.
12: My name is Ashan.
13: My name is Azan Mudassir.
14: This is Ariba and you are listening to Link FM.
5: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
6: Link FM.
15: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
16: और हर सूर
15: दिल को छो जाए,
16: वही है लिंक एफएम।
15: दिल से आपके साथ
16: लिंक एफएम।

0: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ।
1: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Your very own community radio station.
1: Link FM.
2: अस्सलामु अलैकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफ़र साथ साथ करता रहूंगा।

0: workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: तुसा की परेशान खलते हुए हो जी?
2: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं, ए साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म की गड्डियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
2: ए ए एमओटी वाले हैं किधर?
3: ए ए एमओटी प्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE, अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी निकलो ते मौजा करो, फोन नंबर 07867862585।
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: 96.7 Link FM.
7: You are listening to Link FM.
8: कुछ चेहरे चांद जैसे होते हैं, जिन्हें देखकर दिल हर रोज नई दुआ मांगता है,
9: और कुछ मुस्कानें पूरी जिंदगी का सुकून बन जाती हैं। जब पहली बार तुम्हें देखा तो लगा जैसे रात ने चांद को जमीन पर उतार दिया हो। उस पल से मेरी हर सुबह और हर रात बस तुम्हारे नाम हो गई।

0: डालती हूँ। दादा चलती हूँ, अब कब मिलेंगे?
1: जब तू कहे तब।
0: परसों स्कूल के बाद आती हूँ।
1: ठीक,
0: बाय काली।

की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: कैप्टन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
2: मैं औरंगजेब चौधरी।
3: मैं असलम भुट्टा।
4: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
5: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
6: मेरा नाम अहमद अफ़सर है।
7: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
8: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
9: मेरा नाम इमरान है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
0: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
10: और हर सूर दिल को छो जाए,
11: वही है लिंक एफएम,
0: दिल से आपके साथ।

0: Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudashir.
3: This is Rahul.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan.
6: You are listening to Link FM 96.7.
7: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
8: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
9: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
10: And the winner is
11: Your business being heard on the radio.
12: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
13: Sheffield's very own community radio station,
14: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudashir.
3: This is Rahul.
4: My name is Ashan.
5: My name is Azan.
13: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
14: Link FM.

0: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM.
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM. मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM. दिल से आपके साथ
3: लिंक FM Sheffield.

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab hai betar, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइनिक गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया ते द क्लेम टीम तुसने खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 033-00-571-009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
8: 07939-849-339. तू सब का है खुदा तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
9: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
10: My name is Shireen
11: My name is Abdul Rahman
12: My name is Shai Mudashir
13: This is Rahul
14: My name is Azan
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
9: Link FM.
15: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
16: लिंक एफएम

कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: मंजिल जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड
2: कुक स्टूडियो सीजन 15।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Azam.
5: You are listening to Link FM 96.7.
6: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
7: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
8: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
9: And the winner is...
10: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
12: Sheffield's very own community radio station,
13: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Azam.
12: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
13: Link FM.
14: For the latest updates, follow us on facebook.com/6.7.
15: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
16: वही है Link FM.
15: दिल से आपके साथ
16: Link FM Sheffield.
15: हर धड़कन की आवाज है Link FM. मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM. सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है Link FM. दिल से आपके साथ
16: Link

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

ये सोच के कि गम के खरीदार आ गए, ये सोच के गम के खरीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सारे बाजार आ गए। ये सोच करके गम के खरीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सारे बाजार आ गए। आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, आवाज दे के छुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे हर एक बार आ गए। अस्सलामुअलैकुम सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ केंद्र शायद आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ डेप पे भी आप हमारी नशात ब्रेडफोर्ड में डिजिटल साउंड में सुनते हैं। और यही नशात अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है और ज्यादा मेमोरी स्पेस भी आपकी नहीं लेता फोन की। और साबिन हमारी इस समय की यह नशियात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर। और यही नशियात इस वक्त CVFM मिर्ज़बरा से 104.5 FM पे भी रिले की जा रही है। और साथियों अब रंग महफिल के साथ आपके मेजबान सैयद हसन आदरे और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलोस पर आदा पेश करते हैं तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मौजूद सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी आवाज सुन रहे होंगे, आप सभी आदाब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। और अगर खुदा न खास्ता आज कुछ तबीयत अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको से तो सलामती दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अजय सामीन आप जानते हैं कि 14 अगस्त की भी आमद आमद है और ब्रेडफोर्ड मेला की भी आमद आमद है, जी लीड रोड फेस्टिवल 15 और 16 यानी कि अगले वीकेंड को होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक आ रहे हैं और फोक सिंगर मायानास फोक सिंगर नईम हजारवी भी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। और जी है, इस साल ब्रेडफोर्ड मेला के ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो भी वहां पे आप के लिए मौजूद होगा मेन स्टेज पे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जरूर आइएगा, एक खूबसूरत फेस्टिवल जो कि आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। खुद भी आइएगा, अपने अहबाब को भी बताइएगा और खूब रौनक लगाइएगा। और जी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त की आमद आमद है, तो यूं करते हैं कि अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत मिली नगमे।

और एक खूबसूरत पैगाम के साथ आज का ये खूबसूरत मिली नगमा आप सभी सुनने वालों के नाम। हमें मालूम है कि इस बार शायद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जश्न आज़ादी कुछ फीका फीका लग रहा है, जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है। लेकिन एक तहरीर किसी की देखी जो कि दिल में चुप के रह गई, जब आपके घर में चोर और डाकू आ जाए, जब आपका चौकीदार चोरों के साथ मिल जाए, कभी भी अपने घर को आपने भूलना नहीं है, क्योंकि घर तो आप ही का है। हाँ, इस वक्त आर्जी तौर पे उसे चोरों और डाकुओं ने घेर रखा है, चौकीदार भी उनके साथ मिल गया है, ये अलग बात है। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि आपका घर है। एक नई रुत के सफर पे आने वाले दोस्तों, एक नई रुत के सफर पे आने वाले दोस्तों, अपनी मट्टी, अपने मौसम, अपना घर मत भूलना। और वतन के हों अगर कांटे, सजा लो अपनी पलकों में। वतन के हों अगर कांटे, सजा लो अपनी पलकों में। अगर हों फूल परदेसी, ना छूना बेवफा होंगे। तो बिल्कुल वही हमारा आज का पैगाम कि जब आपके घर पे चोरों डाकुओं का कब्जा हो जाए, चौकीदार उनके साथ मिल जाए, तो घर तो फिर अपना ही घर है, उसे बिल्कुल नहीं भूलना। हाँ, आपने चोरों और डाकुओं का पीछा करना है और उन्हें वहां से भगाना है।

जी हाँ, यही हमारी दुआ कि अल्लाह पाक इस कौम को एक कर दे, क्योंकि जो कौमें एक हो जाती हैं उस दुनिया की कोई ताकत, कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा उन्हें शिकस्त नहीं दे पाता। जनाब हबीब जालब ने कहा था कि मुत्तहिद हो के बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो के बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जब तक हम बिखरे रहेंगे ये निजाम हमें इसी तरह निचोड़ता रहेगा, कभी किसी पे कोई मोर लगाएगा और कभी किसी पे कोई। इस निजाम से निजात के लिए हमें इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है इत्तेहाद, इत्तफाक।

आइए एक और मिली नगमा आज के इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अगली ब्रेक के बाद नॉर्मल प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाएगा क्योंकि जश्न आजादी की आमद आमद है। हमने सोचा

ताकि बनता है कि हम भी उसमें अपना हिस्सा डालें। वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से

0: to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज्यादा अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
3: Bradford Asian Radio. The Hindi Urdu

और सामिन अब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंग महफिल में खुश आमदीद। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राजन है इतने, यहाँ कुछ और भी हो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे और तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में राजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।

उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता है। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, वो शख्स तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सांचे में ढल भी सकता था। वो जल्दबाज खफा हो गए चल दिए वरना, वो जल्दबाज खफा हो गए चल दिए वरना, तनाजात का कुछ हल निकल भी सकता था। और अना ने हाथ उठाए नहीं, अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। अना ने हाथ उठाने नहीं दिया वरना, मेरी दुआ से वो पत्थर पिघल भी सकता था। और तमाम उम्र तेरा मुंतजर रहा मोहसिन, तमाम उम्र तेरा मुंतजर रहा मोहसिन, ये और बात के रास्ता बदल भी सकता था।

0: जी सामीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सना। आप लोग सुन रहे हैं बेफोटेजन रेडियो 1430 AM पे। मैं स्टूडियो में आ चुकी हूँ। अगर आप में से किसी को भी हमारे स्टूडियो पे कॉल करना है तो हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर है 01274306677। अगर आप हमें ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का है www.befordasianradio.co.uk। अगर आप यूके से बाहर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं और अपनी अच्छी सी पोएट्री और अच्छे सा गीत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं 07800599563। जी हाँ, 0044 का कोड मिलाना जरूर याद रखिएगा। ये कोड मिलाएंगे तो आप हम तक पहुंच पाएंगे। तो जी, आज हसन जी हम बात कर रहे थे मेले के बारे में।
1: जी जी,
0: तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा मेला है 15 और 16 अगस्त,
2: 15 और 16 को जो मेला है उसकी चर्चे हर तरफ, क्योंकि सिंगर ही ऐसे हैं, किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक आ रहा है, बायनाज फनकार, लोक फनकार नईम हजावी, तो बड़ा मेला होगा। पिछले साल कहते हैं कि तकरीबन 25 से 30 हजार के लगभग बंदे आए थे, तो इस साल तो वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि सिंगर्स भी बड़े हैं।
0: इंशाल्लाह जी, हाँ बिल्कुल, हमारे काफी सारे सिंगर्स आ रहे हैं। तो जी सामीन, आप लोग भी जरूर शिरकत कीजिएगा हमारे इस बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में। मेला हमारा लगेगा, ये आप लोगों के खातिर हम लोगों ने जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है आप लोगों के लिए। हम इब्राहिम हक को, नईम हजारी को बुला रहे हैं, और जो बेफोटेजन रेडियो वो है सोशल मीडिया पार्टनर है, और आप लोग जरूर आइएगा, अपने बच्चों को लेके आए, क्योंकि ये जो है मेला जो है बच्चों स्पेशल किया गया है ताकि बच्चों की स्कूल हॉलीडेज हैं, तो आप लोग आए, बच्चों को लाएं और बहुत सारे एंजॉयमेंट करें,
2: और साथ साथ जश्न आजादी भी,
0: और साथ में हमारा जश्न आजादी भी है 14 अगस्त पे। तो जाहिर सी बात है जश्न आजादी है, लेकिन आप लोग 15 पे भी आके सेलिब्रेट कर सकते हैं। मेला होगा तो ऑफकोर्स बात है होंगे, बड़े अच्छे से फनकार जा रहे हैं। तो जी, तो फिर समझे आपकी भी इंडिपेंडेंस डे बन गया, आपका भी,
3: हमारा भी, आपका भी है। उस दिन हम दोनों जुदा हुए थे, एक दूसरे
0: जुदा हो गए थे, पाकिस्तान आजाद हो गया था, इंडिया भी आजाद हो गया था,
3: इंडिया भी आजाद हो गया था, पाकिस्तान भी हो गया था,
2: लेकिन कुछ आजाद हो सके और कुछ नहीं। किस्मत अपनी अपनी है, हम आप पे रश करते हैं कि आप उस एतबार से कंप्लीट आपको आजादी मिली, लेकिन हमारी आजादी जो है वो एक तरह से खासी वो उलझनों का शिकार हुई है। कभी कभी पता चलता है कि हम आजाद हैं और कभी समझते हैं
3: आप हमसे आजाद हुए तो अपनों ने ही कैद कर लिया
2: हमें, अपनों ने

0: तो सुनने वालों के नाम करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सुनो
1: हम उनसे मोहब्बत करके
0: दिन रात
1: सुनो

0: ਬਸ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ।
1: ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। तो आप लोग जरूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। आप एक्साइटेड है? एक्साइटेड तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है
0: मैंने ड्रेस निकाल के आयरन करके रख दी है, बस यही पहननी है मैंने।
1: आपकी मैं पिक्चर भी बनाऊंगी लड़क के साथ।
2: सही। और यूं है सामिन कि अब थोड़ी देर में हम चलते हैं ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जरूर तशरीफ लाइएगा। सुनने वालों से यही गुजारिश है कि जब हम आप
3: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है,

0: या आप सुनाएं, आप कैसी हैं?
1: अलहमदुलिल्लाह जी, टिप टॉप मजे में हमेशा की तरह।
0: तो बहुत अच्छी बात है। बताएं हमारे फ्रांस का वेदर कैसा है?
1: अरे गर्मी है।
0: हाँ, आज यहाँ पे भी नोटिस देख सकता है, आज भी बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ी है। तो उम्मीद करते हैं वहाँ पे भी बहारें आ जाए और यहाँ यूके में भी बहारें आ जाए, मोहब्बत का मौसम आ जाए, ठंडी ठंडी हवाएं आ जाए।
1: आपको तो पता है ना कि यूरोप में जो है वो ठंड कितनी पड़ती है, तो गर्मी जैसे टकाके पड़ी है तो ठंड भी टकाके ही पड़ेगी
0: इंशाल्लाह।
2: लगता ही
0: है, लगता
2: है। अल्लाह का शुक्र है, सब सब खैरियत है, ठीक ठाक है। मौसम के हवाले से कोई एक शेर सुना दें ताकि हम भी फिर कोई शेर सुनाएं मौसम के हवाले से।
1: मौसम के हवाले से तो देखना पड़ेगा।
2: अच्छा, मैं आपको सुनाता हूँ एक।
1: आप सुनाइए, मैं देखती हूँ।
2: अच्छा,
1: जी जी ठीक है।
2: वो गर्म रुत में ठंडी हवा का झोंका है, वो गर्म रुत में ठंडी हवा का झोंका है, जरा करीब से गुजरा तो नींद सी आई। जी जी, तो चलिए आप सुनाइए, जो भी सुनाना चाहे आप सुनाइए।
1: ये मैं कहेंगे एक बार फिर आप सुनाइए, बहुत प्यारा आपने सुनाया।
2: अच्छा, कि वो गर्म रुत में, वो गर्म रुत में ठंडी हवा का झोंका है, वो गर्म रुत में ठंडी हवा का झोंका है, जरा करीब से गुजरा तो नींद सी आई।
0: क्या बात,
1: बहुत वेरी नाइस। चलें हम आपको फिर कुछ और ही सुनाते हैं।
2: जी जी,
1: एक सेकंड दीजिए मुझे, सॉरी मुझे पता है कि बाकी लोग
2: की मसला नहीं, आप टाइम ले लें और सना आप अपनी गजल कंप्लीट कर लें अगर आपके पास कुछ है।
0: मेरे सिर्फ दो इशार रह गए थे। हीर, आपको मेरी गजल कैसी लग रही थी?
1: हीर, मैंने बहुत कम सुनी क्योंकि आवाज आपकी, आप शायद दूर हो माइक से तो थोड़ी कट जाती है।
2: जी जी, आप माइक के पास आ जाओ।
0: अभी आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: जी जी,
0: तो फिर हम आपको सुना दें।
1: हाँ जी,
0: जब तक आप ढूंढती हैं अपनी कोई अच्छी सी गजल, तब तक हम अपनी कम्प्लीट कर लेते हैं।
2: ठीक है,
0: तो ऐसी है। शबे माहे मुख्तसिर थी, मुझे हाय क्या खबर थी।
2: क्या कहने,
0: शबे माहे मुख्तसिर थी, मुझे हाय क्या खबर थी, कि तुलू ही फिर ना होगा मेरा महताब ढल के।
2: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह। तो कहते ना कि कभी चांद में उभर कर कभी चांदनी में ढलकर, कभी चांद से उभर कर कभी चांदनी में ढलकर, तेरा हुस्न छेड़ता है मुझे रुख बदल बदल कर।
0: क्या बात है,
1: अरे वाह,
0: क्या बात
1: है।
2: जी जी, आपको मिल गई है तो सुनाइए।
1: मैं सना का वेट कर रही
0: हूँ। मेरे तो शुरू के 6-4 में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी, लास्ट 2 रह गए थे, तो आपकी कॉल आ गई तो हमने सोचा।
1: अच्छा ठीक है, चलिए जी। ये कतील शफाई साहब की है, कि कहते हैं कि कब तक क्षमा जली याद नहीं, कब तक क्षमा जली याद नहीं, या शाम गम कैसे ढली
2: याद नहीं,
1: याद नहीं।
2: बहुत खूब।
1: शाम आम कैसे ढली याद नहीं, इस कदर याद है अपने थे सभी।
2: आहा,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: इस कदर याद है अपने थे सभी, किसने क्या चाल चली याद नहीं।
2: क्या कहने, क्या कहने,
0: क्या बात।
2: वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, वो इस कमाल से खेला था इश्क की बाजी, मैं अपनी फतह समझता था मात होने तक।
0: वाह बहुत
1: हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब जी, बहुत खूब। इस पे कहते हैं कि हम जमाने में कुछ ऐसे भटके, हम जमाने में कुछ ऐसे भटके, अब तो इनकी गली भी याद नहीं।
2: हाँ हाँ, अब तो उनकी गली भी याद नहीं। बहुत खूब,
1: याद
2: बहुत
1: नहीं।
2: बहुत अच्छा।
1: अबर था जान था पर आप न थे।
2: क्या कहने,
1: अबर था जाम था पर आप न थे, वो घड़ी कैसे टली
2: याद नहीं। बहुत खूब।
1: कट गई उम्र किस तरह कटी, कट गई उम्र किस तरह कटी, वो बुरी थी के भली
2: याद नहीं। बहुत खूब। और एक शेर इससे याद आया कि उसकी छोटी छोटी बातें सब याद रही, उसकी छोटी छोटी बातें सब याद रही, अपना सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं।
0: क्या बात,
1: कुछ याद नहीं। बहुत खूब। इस पे मैं कहना चाहूंगी कि कहते हैं कि कब पानी गिरने से खुशबू फूटी है, कब पानी गिरने से खुशबू फूटी है, मिट्टी को भी इल्म है बारिश झूठी
2: है। क्या कहने, क्या कहने, बारिशों के मौसम में बारिशों के मौसम में उसको याद करने की आदतें पुरानी हैं, बारिशों के मौसम में उसको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब के बार सोचा है आदतें बदल डालें। बारिशों के मौसम में उसको याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब के बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आता है आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती।
1: क्या बात, बारिशें नहीं रुकी, बहुत खूब जी,
0: बहुत
1: खूब, कमाल है जी, कमाल है। इसलिए कहते हैं कि एक रिश्ते को लापरवाही ले डूबी,
2: एक रिश्ते को लापरवाही ले डूबी,
1: एक रस्सी ढीली पड़ने पर टूटी है।
2: बहुत खूब, बहुत खूब, प्यारा है।
1: एक रिश्ते को लापरवाही ले डूबी, एक रस्सी ढीली पड़ने पर टूटी है।
2: और रस्सी के हवाले से एक शेर याद आ गया, धागे और रस्सी की एक ही बात होती है ना
1: जी।
2: कि जज्बा इश्क सलामत हो तो इंशाल्लाह, जज्बा इश्क सलामत हो तो इंशाल्लाह, कच्चे धागे से चले आएंगे सरकार बंदे।
0: क्या बात,
1: हाय क्या कहने हैं जी। हाथ मिलाने पर भी इस पे खुला नहीं, हाथ मिलाने पर भी इस पे खुला नहीं, ये उंगली पर जख्म है या अंगूठी है।
2: क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।

0: पास भी सूखे दरख्त थे।
1: क्या बात,
2: अरे वाह, अरे वाह। नूह से पूछो पीछे रह जाने वालों, नूह से पूछो पीछे रह जाने वालों, कश्ती छोटी है कि दुनिया छोटी है।
0: क्या कहने, खूबसूरत है कि अब नूह कहां जो हमें कश्ती पे बिठा ले, अब नूह कहां जो हमें कश्ती पे बिठा ले, वरना किसी तूफान के आसार तो सब है।
2: आए हाय, क्या बात है जी। लास्ट टू लाइन से कहते हैं कि हमने इन पर शेर नहीं लिखे, हमने इन पर शेर नहीं लिखे, हमने इन पेड़ों की इज्जत लूटी है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहें, क्या कहें।
2: बहुत शुक्रिया आपकी सुनवातों का, थैंक यू सो मच।
0: बहुत शुक्रिया, और आपके लिए हमारी जानिब से बहुत सी तालियां। सलामत रहें, सलामत रहें,
2: अल्लाह हाफिज़।
0: और रजीन सामिन अभी हीर थी फ्रांस से हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रही थी। क्या कहने इनके, और इनका लहजा बड़ा मुनफरिद
1: है। हाँ, इनकी आवाज बहुत प्यारी है। तो अगर आप भी हमारे स्टूडियो पे कॉल करना चाहते हैं और अपनी प्यारी सी आवाज हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे ब्रेफर्ड एजेंट रेडियो 1430 AM पे कॉल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677। अगर आप हमारी वेबसाइट पे सुन रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.brefordagentradio.co.uk। अगर आप यूके से बाहर हैं और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो पे कॉल करना चाहते हैं, तो हमारे दिलों तक पहुंचने के लिए, हमारे स्टूडियो तक पहुंचने के लिए आपको नंबर डायल करना होगा 00447800599563 पर।
0: और एक गजल सुनने वालों के लिए हम पेश करते हैं, जब तक हमारे अगले सुनने वाले लाइन पे आते हैं, कि मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल हूँ किसी और का मुझे सोचता कोई और है, सारे आईना मेरा अक्स है, बस ये आईना कोई और है।
1: क्या बात है।
0: और मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफे दुआ में हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का मुझे मांगता कोई और है।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: और अजब एतबारों बे एतबारी के दरमियान है जिंदगी, अजब एतबारों बे एतबारी के दरमियान है जिंदगी, मैं करीब हूँ किसी और के मुझे जानता कोई और है।
1: क्या बात है।
0: और मेरी रोशनी तेरे खदो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर मेरी रोशनी तेरे खदो खाल से मुख्तलिफ तो नहीं, मगर तू करीब आ तुझे देख लूं तो वही है या कोई और है।
1: क्या बात।
0: और वही मुनसफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, वही मुनसफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, मेरा जुर्म तो कोई और था ते मेरी सजा कोई और है।
1: बहुत अच्छे।
0: और कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से, कभी लौट आए तो पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता
1: कोई और है। क्या बात है, बहुत खूब।
0: और इस गजल का जो मकता है बहुत ही प्यारा है, कि जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, जो मेरी रियाजत नीम शब को सलीम सुबह न मिल सकी, तो फिर इसके माने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई
1: और है। बहुत अच्छे, बहुत खूब।
0: और यूं कहते हैं कि मिला कि आमद आमद है, तो उसी हवाले से इब्रार का एक गीत सुनाते हैं। और हमारे अगर कोई भी सुनने वाले आना चाहे
1: जी, तो आप हमें सुन रहे हैं बेफोर एशियन रेडियो 1430 AM पे। अगर आप हमारे स्टूडियो पे कॉल करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306677 पर।
0: और बताइएगा किने किने जाना है मेले।
1: जी जी सामीन, हमारा जो मेला है वो 15 and 16 August पे होगा। उसी के सोचकर हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बचपन का गाना लगाने लगे, गाना का किने किने जाना, बिलो देकर टिकट कटाओ, लाइन बनाओ जी लगाए।
0: वहाँ कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल
1: फ्री में आप लोगों ने मेले पे आना, लेकिन गाने के लिए गाने में है टिकट कटाओ,

0: सभी सामीन आपको रंगीन महफिल में एक बार फिर से खुशामदीद है। आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गीत किने किने जाना बिलो दिखर, इब्राहिम हक का बहुत ही प्यारा सा गीत था जो आज आप सुन रहे थे।
1: और कहते हैं कि जब इसने ये गीत गाया था तो बिलो शायद इसकी कजन थी।
2: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the God today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center.

0: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
0: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
5: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

0: कल करनी करनी मम्मी देना जी। सना जी आपको कैसा लगा हमारा?
1: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, इब्राहिम हक का था। तो देख लें, अगर आप लोगों को इब्राहिम हक से मिलना है और इब्राहिम हक के ऐसे ही दिल धड़काने वाले गीत सुनना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बैफर मेला में तशरीफ लेके आइएगा 15 और 16 अगस्त पे बैफर मोर पार्क।
2: यकीनन बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है। जाहिर है आपको पता है कि अगर जो
1: ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं लोगों को टिकट बाय करनी पड़ती
2: है। टिकट्स नॉर्मली, वही तो मैं बात करना, आप मेरे ऑन्टो की छेड़ ली कि देखें कि जो
1: फ्री एंटरटेनमेंट है
2: सिंगर्स आते हैं तो आपको पता है कि 25, 30, 40, 50 पाउंड
1: बिल्कुल,
2: और मीट एंड ग्रीट तो 100 पाउंड होता है
1: बिल्कुल।
2: लेकिन क्या है कि यहाँ आपके लिए बिल्कुल एक फ्री
1: बनानी है, मीट एंड ग्रीट करना है, उनसे बात करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए और आके इब्राहिम हक से मिलिए।
2: और इसी तरह दूसरे सिंगर भी हैं, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि अगर हमारे कोई भी सुनने वाले, हमारे पास तकरीबन 5 मिनट हैं, एक कॉलर से ही बात हो पाएगी, हमारे कोई भी कॉलर आना चाहे, तशरीफ लाना चाहे, तो आप नंबर मिला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं।
1: आप हमारे सुन रहे हैं बेफुट एजेंट रेडियो 1430 AM पर। अगर आप हमारे स्टूडियो पे कॉल करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो का कॉन्टेक्ट नंबर है 01274306677 पर। और अगर आप हमें ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.beffordasianradio.co.uk। अगर आप यूके से बाहर हमें सुनना चाह रहे हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पे कॉल नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। कोड मिलाना जरूर याद रखिएगा 00447800509563 पर।

0: और जी हम आज के इस प्रोग्राम में हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको दोनों सिंगर्स जो बड़े नाम हैं इब्रारुल हक और नईम हजारवी, उन दोनों के आपको अच्छे अच्छे गीत सुनाएं, लेकिन ऐसे सुनने का जो मजा है वो कुछ हो रहा है, लेकिन जब आप
1: इन्हें सामने सुनेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप आएंगे और लाइव पे नईम हजारवी
2: को आपकी नजरों के सामने होंगे,
1: लाइव परफॉर्मेंस होगी ना बेसिकली,
2: क्रीप से देख पाएंगे आप उनको एक स्क्रीन के बिना,
1: बिल्कुल,
0: और एक मेले का माहौल और समा ही कुछ और होता
1: है। बिल्कुल ऐसे
2: ही है, खाते खाते आप सामने सुन रहे होंगे उनको,
1: ऐसा ही है बिल्कुल, ऐसा ही है बिल्कुल,
0: सही सही। और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट, बड़ों के लिए, लेडीज के लिए, हर तरह के स्टॉल,
1: तरह तरह के स्टॉल वहाँ पे होंगे, फूड्स के स्टॉल होंगे, कपड़ों के होंगे, हर चीज के स्टॉल होंगे,
0: सबसे बढ़
1: के
0: ब्रेड फूड के रेडियो
1: रेडियो वहाँ पे होगा, और हम सब लोग आपको मिलकर एंटरटेन करेंगे। हम लोग वहाँ पे लाइव प्रोग्राम्स भी लेंगे, लाइव कॉल्स भी लेंगे, और आप लोगों से मजे मजे की बातें भी करेंगे।
0: सही, तो अब आज के इस प्रोग्राम से आप सभी सुनने वालों से चाहेंगे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे, और यूं ही आप सभी हंसते मुस्कुराते रहे, तो इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में होती है मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
1: अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह हाफिज।
0: अजी हाँ सामीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और जाते जाते आपको नईम हजारवी का वही गीत, चलो कोई गल नहीं, सुनाते हैं।

0: listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कांटेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
4: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Sheffield's very own community radio station.
8: Link FM.
9: My name's Shireen.
10: My name is Abed Rahman.
11: My name is Saim Mudashir.
12: This is Rahul.
7: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
8: Link FM.

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज।
3: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की एमओटी नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की एमओटी एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की एमओटी का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT, क्ले स्ट्रीट, अटकली, शेफील्ड, S92VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 07867862585।
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shahin Mudashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
8: And the winner is
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
11: Sheffield's very own community radio station.
12: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Shahin Mudashir.
3: This is Rahul.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.
11: Link FM, your number one community radio station.